0: क्यों?
1: ओनी क्यों?
2: ओनी क्यों?
3: मिन्ना कनिचुआ.
2: मिन्ना कनिचुआ.
4: C'est le club manga d'Anvers sur Radio Super.